But in this hall where we are sitting, there are two who knows everything. आप इस कमरे में हॉल में बैठे आश्रम में तो आपको पता है आपको पता होना चाहिए कि इस हॉल के अंदर में दो ऐसे हैं जो कि आपके मन की बात आपके विचार आपके फीलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो दोनों ही जानते हैं आप नहीं छुपा सकते हो एक तो है भगवान भगवान सब कुछ जानते हैं कि नहीं जानते आप झूठ बोलोगे आप ये करोगे आप तो भगवान जानता है भगवान देखता है एक महात्मा आए और उनके पास दो भक्त आए दो डिसाइपल्स दे वॉन्ट टू बिकम द डिसाइपल ऑफ द महाराज कि गुरुजी हमें मंत्र दीजिए हमें आशीर्वाद दीजिए मेरे को शिष्य बनाइए तो गुरुजी ने कहा ठीक है परीक्षा कि हाँ कहिए गुरुदेव क्या परीक्षा कि दोनों एक एक कबूतर पकड़ के लेके आ जाओ गए दोनों एक कबूतर पकड़ के लेके आ गए तो गुरुजी ने कहा कि आप दोनों जाओ चक्कू लेकर के और कबूतर को मार के आ जाओ लेकिन उस जगह जाकर के मारना कि कोई उसको देखे नहीं एक गया बाथरूम में जाके उसकी गर्दन काट के आ गया ले गुरु जी कि किसी ने देखा कि नहीं किसी ने नहीं देखा दूसरे को कहा ले भाई तुम भी तरह जा वो गया बाथरूम में गया वापस आया कि गुरुजी आपने कहा कि कोई नहीं देखे वहां लेकिन मैं तो देख रहा हूं तो तेरे आंख पट्टी बांध ले जा पट्टी बांध के गया वापस फिर आ गए वापस के गुरुजी आपने कहा कोई नहीं देखता है मेरे तो आंख के पट्टी बांध दी लेकिन कबूतर तो देख रहा है कि मैं उसको मार रहा हूं कि उसकी भी पट्टी बांध दे गए वापस जाकर के वापस आ गया कि गुरुदेव मेरे आंख की पट्टी बांध दी कबूतर की आंख की पट्टी बांध दी लेकिन भगवान तो देख रहा है भगवान की आंख मैं कैसे बांधू तब कहा तू पक्का चेला है बेटा तुम्हारे को मंत्र दीक्षा देंगे और उसको कहा ला इधर कबूतर को उसको गुरुजी जिंदा करके उड़ा दिया तो उसी प्रकार दैट इज ए स्टोरी अबाउट अ पिजन एंड यू नो ऑल तो फर्स्ट दैट गॉड नोज व्हाट यू आर थिंकिंग व्हाट यू वांट व्हाट इज योर प्रॉब्लम व्हाट यू वांट टू डू इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा और दूसरा इस हॉल के अंदर में जो है वो जानता है और वो ये है आप खुद जानते हो तो भगवान जानता है और आप जानते हो ये दोनों ही जो है इसी हॉल के अंदर में इसी आश्रम के अंदर में जो बैठा है वो कर रहा है तो उसी प्रकार जब मनुष्य का When the human soul enters into the human body, God gives us the freedom. But then it is like that you will be bounded to the karma. And that karma, what we call the action. Where the action, it will be reaction. Or where the reaction, there will be the action. Good reaction is good action. Good action is good reaction. Bad action, good and bad. Paap and punya. Keval manushya ke saath mein hota hai. The manushya, the human,

0: ना वृक्षारोपण तो है। हरिओम हरिओम, हाउ आर यू? ठीक हो? टुडे इज माय बर्थडे। तो जा कहाँ रहे हो इतना जल्दी? मोमेंट मोमेंट, कुछ लेके जाओ, कुछ लेके जाओ। ये लो, ये वो कहा है? बेस्ट वन। ओके, दिस इज द बेस्ट वन। तो इतनी जल्दी में क्यों?
1: घर जाके आते तो फिर वहां घर
0: ठीक है। सो इट इज लाइक दिस दैट आई थिंक बाय द डिवाइन, बाय द ऋषिज, एंड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन्स एक्शन टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटीज एंड नॉट गो टूवर्ड्स द नेगेटिविटीज। नाउ नेगेटिविटीज कम नाउ टू मच, मीट, अल्कोहल, बट इन दिस प्योर फेस्टिवल्स देयर इज अ वेरी प्योर, दैट इज वेरी वेरी गुड। सो टूडे इज द डे ऑफ दिस। समवन सेड दैट माय बर्थडे, बट बर्थ इज एवरी डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन।

जब लक घट में प्राण। दया, दया मीन्स मर्सी, कॉम्पैशन, लव। दया धर्म का मूल है। धर्म मीन्स राइटनेस, अचीवमेंट, प्रिंसिपल। अहिंसा परमो धर्मा, द हाइएस्ट प्रिंसिपल इज ए नॉन वायलेंस। फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, पॉलिटिकली, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इफ यू टॉक बैड अबाउट समवन और दैट, दिस विल कम बैक टू यू। सो यू शुड बी लाइक ए लाइट। व्हेन वी टर्न ऑन द लाइट, डार्कनेस इज गॉन। देयरफॉर लॉर्ड, लेट मी बी लाइट इन डार्कनेस, सो दैट आई वेर एवर कम आई मे इन लाइट द हार्ट्स ऑफ अदर्स। धर्म, विदाउट धर्म दिस फ्लावर्स विल नॉट ग्रो। विदाउट दैट धर्म द फ्रूट्स विल नॉट कम। दैट्स कॉल्ड सनातन धर्म, द यूनिवर्सल प्रिंसिपल। एंड हाउ टू अचीव दैट, अंडरस्टैंड दैट, इज कॉल्ड दया। उस फॉर द दया वी हैव टू फॉलो दैट धर्म, मर्सी। विच धर्म डिड दैट मदर्स फॉलो? दो दे वर सफरिंग बट दे डिडंट गिव अप देयर मर्सी। दया धर्म का मूल है पाप, मूल अभिमान। एंड द रूट्स ऑफ द सिंस इज ईगो। I will do, I will do, they will see, it will see, I, that is the part of the

में श्री श्री देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

0: Come a little back. Thought of. मेरे पप्पी से आओ यहाँ मेरे पास में. अब दोनों एक साथ साथ रहो बेटा. और मास्क निकल निकाल दो. साइड करो स्लो. थैंक यू.
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय. देवेश्वर महादेव की जय.
0: थोड़ा दूर है.
2: हिंदुम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय.
1: श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमन स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय.
2: Without Guru, we cannot know Brahma, Vishnu, Mahesh. Actually, Guru is not only Brahma, Vishnu, Mahesh. Guru is also Par Brahma, Parameshwar. Om.

0: पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित परिभज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
1: देवपुरी समादेव
0: की जय।
1: माधवानंद जी भगवान
0: की जय।
1: दीप नारायण भगवान
0: की जय।
1: अलकपुरी जी महादेव
0: की जय।
1: भारत माता की
0: जय।
1: जय।

देव नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव, अलकपुरी जी महादेव की, सदगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। ओम बोले श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: की जय।
1: देवा देवेश्वर महादेव
0: की जय।
1: श्री नारायण भगवान
0: की जय।
1: हिंदू धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधव आनंदपुरी जी सद्गुरुदेव भगवान
0: की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वर।

श्री दीपनारायण भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, सतगुरुदेव की जय।

श्री तारायण भगवान की जय। श्री विष्णु कुंदेश परम स्वामी अश्विन जुड़ देव की जय। जुगत

0: तरह भगवान की जय। श्री विश्वगंध छ परम स्वामी अश्वंति गुरुदेव की जय।
1: Yeah, repeat now, no? Repeat.

वनम सजते सर्वं संध्या दीपं सर्व सत्यम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर नमस्तुते।

सतगुरु स्वामी माधवानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सब ऋषि मुनि महात्माओं की, माता पिता गुरुदेव